0: अष्टपदी।
1: जिसके अंतर राज मान सो नरकपाति होव स्वान।
0: जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत विस्ताका जंत।
1: आपस को कर्मंत कहावे जन्म मरे बहु जौन परमावे।
0: धन भूमका जो करा गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान।
1: हर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानक यहाँ मुकत आ गए सुख पावे।
0: धनवंता हुए कारगर बावे त्रिन समान का संग न जावे।
1: और लश्कर मान ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश।
0: साबती आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पशमंत।
1: न बदया पंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी।
0: गुर प्रसाद जाका मिटा बमान सो जन नानक दर गया परवान।
1: और कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले बिथारे।
0: अनक पसिया करी अहंकार।

0: बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोरथ व्यर्थ है सब काज
1: नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसा प्राप्त होए
0: कर्म करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्म करावन करना हार इसका हार कहा विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए
1: जो किश कीनो

0: सोत मीत कुटाम यार बनता इनते कहो कम कवन सनाथा
1: सती राते सवारी झूठा डंप झूठ पा सारी।

0: राष्ट्रपति।
1: जब कार्य कृष्ण दृष्टि ता पापुन तब कहते होता।
0: जब कार्य अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग मात।
1: जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर्क शोक को किसे व्याप्त।

0: जब नाथ निरंजन गोचर गाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: जा जन्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता

मुकत पाई, रिद सिद सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई, मन मुखा नो प्रतीत न आवी, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदय शब्द न पेदयो, हर नाम न लागा पाओ, कूड़ कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका आलाओ, भगतां

गुर प्रसाद सदा मन वसया, सब काज सवारन हारा, उनकी रिस करे सो विगुचै, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुरु

कोई किसी तरीके के कर्म करी जा रहे हैं। पातशाह कहते हैं नहीं, जिन्हें मर्जी कर्म करो, वध तो वध कर लो, बिन सतगुरु सेवे जन्म ना छोटा। ये जन्म मरण का चक्कर परमात्मा की शरण पे तो बिना नहीं खत्म होना। वेद पढ़ा है तैं वाद वखाण है, बिन हर पत गवाई। वेद पढ़े चार वेद भाव धर्म ग्रंथ पढ़ ले, पढ़न तो बाद भी फिर विवाद विच पै गया, बहस विच पै गया, वाद वखाण है, उन्होंने पढ़ के उन्होंने मिले उपदेशों हिरदे विच नहीं टिकाया। वेद पढ़ के अंदर होमे पैदा कर ली भी मैं देखो कि ना पढ़ ले, मैं पढ़ रहा, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिया खात, पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास। आप रोज आसा की बार च पढ़ते सुनते, जिन्ना मर्जी पढ़ रहा है, बड़ा कुछ पढ़ रहे। पाशा कहते ने पढ़ लिया पढ़न तो बाद फिर विवाद विच पै गया। बिन हर पत गवाई, परमात्मा तो बिना यह इज्जत नहीं रहती। पत केवल परमात्मा ने रखनी, उदे नाम नाल जुड़ांगे, अंदर नाम टिकेगा तो पत रहनी। तो जे नाम नू पढ़ भी लिया समझया ही नहीं, उदे मुताबक चलिया ही नहीं, इस गल का हंकार अंदर बन गया कि मैं तो बहुत पढ़ लिया जी, मेरे नाल तुसी बहस करके देखो, डिबेट करके देखो, मेरे को बड़ा सारा ज्ञान आ गया। अज बड़ा सारा ऐसे ज्ञानवान लोग आप हमने गल कर रहे हैं, बड़े बड़े बड़े इश्तहार दे के लोग कहते सानू बहुत कुछ पता है। ज्ञान होना चंगी गल है, पर कला ज्ञान तुहानू मुक्ति नहीं दवाएगा। जदों तक अंदर प्यार नहीं, जदों तक अंदर भरोसा नहीं है, जे ज्ञान आ गया अपनी होमे वध गई तो भरोसा खत्म हो गया। पाशा कहिंदे वेद पढ़े तै वाद वखाणा, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटे गुर शरणाई। कहिंदे ओ सतगुर हमेशा कायम रहण वाला है। साची जिस बाणी, जिस सतगुर की बाणी भी सच्ची है, हमेशा कायम रहने वाली है। पज छुट है उसका भजन कर, फिर तेरा छुटकारा होगा। उस गुरु की शरण में जा, उदे गुरु के नाम उदी बाणी का भजन कर, उदे नाम नू जप, उदे नाम नाल सांझ पा, गुरु की शरण में पै जा, फिर तेरा छुटकारा होएगा। आखिरी पदे च पातशाह कहिंदे ने जिन हर मन वसया से दर साचे, दर साचे सचे आरा। जिन्हां दे हिरदे विच, जिन्हां दे मन विच परमात्मा वस गया, भाव अंदर नाम टिक गया, उन्होंने पढ़िया, पढ़न तो बाद समझिया ते अंदर टिका ले, अंदर वस गया, से दर साचे, वो परमात्मा दे दर ते सचे। दर साचा सचियारा, फिर वो सचियार ने जिन्होंने परमात्मा के नाम नाल सांझ पा ली, उसनू अपने हिरदे विच मन विच वसा लिया। फिर अगली पंक्ति च पातशाह कहिंदे ने उन्हां दी शोभा जुग जुग होई, कोई ना मिटन हारा। ते फिर सारे जुगां दे विच भाव हरेक समय उन्हां दी शोभा होती है, उन्हां दी वड्याई होती है, लोग उन्हां दी जय जयकार करते, उन्हां दी शोभा जुग जुग होई, कोई ना मेटन हारा। तो इस शोभा नू कोई मेटन वाला नहीं है। ये शोभा मिली किवें? जिन हर मन वसया, जिन्हां दे हर परमात्मा जिन्हां दे मन विच वस गया, उन्हां दी शोभा हो गई, उन्हां दी वड्याई हो रही है। उस वड्याई नू कोई होर मेट नहीं सकता। आखिरी पंक्ति च पातशाह कहिंदे ने नानक तिन कै सद बलिहार है, जिन हर राखिया और धारा। कहिंदे मैं उन्हां तों सदके जाना, बलिहार जाना, जिन्हां ने परमात्मा नूं अपने हिरदे विच, उर दा मतलब हुंदा हिरदा, जिन हर रखिया उर धारा, उर दे विच टिका लिया, अपने धर लिया, टिका लिया। आपां धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे सलोक पढ़दे हां, आखिरी सलोक च पातशाह कहिंदे राम नाम उर मैं गहिओ, जां कै सब नहीं कोई। जिन्हां ने परमात्मा दे नाम नूं अपने हुरदे विच ग्रहण कर लिया, टिका लिया, कोई उन्हां दी बराबरी नहीं कर सकता। ते इत्थे भी धन गुरु अमरदास महाराज आखिरी पंक्ति च कह रहे ने

छोटा है, गर्भ घुमाने मांदे खोटा है। सोच करे दिन सर रात, उम्र की मैड तंत जात, इस देही को वह साधना करे मन दी, कबू न बिखिया टर जल तो वह बह देहा नीत। शुद्ध कह भी काज पीत, मन हर के नाम की महमा ऊच नायन के नाम बुदरी, पतत भाव ऊच बहुत सियाण जम का भाव, ब्याह पैन के जंतन कार त्रसना त्राप है। पीख अनीक अग्नि बुझ, गोड़े पार दर्ग नहीं सिजय, शूट नहीं ऊब पयार, मोहि ब्याह भमाय जार, अवर कर दू सगर जम डान, गोविंद भजन बिन तेल नहीं मान, हर का नाम जब तो दुख जाय, नानक पूरे सह सुभाय, चार पदार्थ जी को मांग सा जनक सिवा राग, जी को अपना दुख मिटावे, हर नाम रदा साध गावे, जी को अपनी सुभा दूर सा संग हो मैं छोर, जी को जन्म मरण तीडर सा जन की सरणी पैर, जय जन को प्रवत प्यास नानक तक बैर बल जा सा, सगर पुरख मा पुरख प्रधान सा संग जा को मिटे अभिमान, आप सिखाओ जो जान नीचा, सौगन ये सब दीचा, जा का मन हो सकल गिरीना, हर हर नाम दिन कट कट चीना, मार अपनी तो बुरा मिटा न पीख, सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समृष्टि तनायन पा पुन हिरे पा, निर तन को तन तिरो नाउन, था भी को नाउन तिरा था, उन मानी को प्रभ तिरो मान, सकल कड़ा को दिवह दान कर्ण कराउन, हार स्वामी सकल कड़ा के अंतर जमी, अपनी गात मित जान हो आप ही, अपन संगा प्रभ राति तुमरी उस्ता था, तुम दिहो नान कबर न जान सकोई, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जब निर्मल करम, और सकल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग, दुर्मत मर हिरिया सकल उद्यम है उद्यम परा, हर को नाम जब हो जी, सदा सकल बानी में अमृत बानी, हर को जा सुन रसन बुखानी, सकल थान दियो हो उत्तम था, नानक जी काड़वास हर नाम सलोक, निर्गुनी हर यानिया सब पर सदा संवार, जिनकी याद है जीत राख नानक निभि नार, राष्ट्रपति नमैया कि चेत प्राणी को मूल देख दृष्टानि, जिन तुम साज स्वर सीगारिया, गर्भगन में जन हो बैरिया, बैर व्यवस्था तुझे है प्यारा, दूध पर जो मन भोजन सुख सूद व्यर्द भया, ऊपर साग सैन मख पिया, बैठ कर दयन हो निर्गुण गुण कृष्ण पूजा बख्श ली हो, तो नानक सीजा जय प्रसाद, दारु ऊपर सुख बस है, सत प्राथमिक बनता संघर्ष है, जय प्रसाद पी वह शीतल जल है, सुखदाई पावन पाव कमला, जय प्रसाद भोग हैं सब रसा, सग समग्री संग साथ, वसा दिन हस्त पाव करना, निय तर रसना, तिश त्याग और संग रचना, ऐसे दुख मूढ़ अंध व्यापी, नान काढ़ ली हूपरा व्यापी,

अनुपगत पावे प्रभु पावत पाथर त्राव प्रभु पावे बिन सास तेरा को प्रभु पावत हर गुण पाख है प्रभु पावत पत देव धारा आप कर अपन विचार द

कोय। जाविह जानम किस करता तब लाग कर जोन में फिरता जब तार को बैर मी तब लाग नीह चलना है चीर जब लाग मु मगन संगवाय तब लाग तनुराय दिस जाय प्राप्त कृपा दिवंदन दूटा गुरु प्रसाद नानक।

साहब का स्वरत है दूसरा किया जैसा करे दह गुथिया अपन के लाभ करने और दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करत सब नाम देव भागी नानक जान से श्लोक तजह सियान सुर जन सिमरह हर हर का सहर मन रखो नानक दुख परम पव जय अष्टपति मानुख की टेक वृद्धि सब जान देवन कई का भगवान जिसका दिया रह आगाई वाहन तुरसना ला गया मार रख कुमार कर मन मेरे सद व्यवहार निर्मल रसना अमृत भी सदा सुहेला कर लिख जियो नैन बेख ठाकुर करंग सत्संग बिन सत्सव संग चरण चल मार गोविंद मिटह पर जपि अरविंद कर हर करम श्रवण हर कथा हर दर्गन अनुकूल मथा बिड़ भागी ती जान जग माही सदा सदा अर्घ गुण गाही राम नाम जो कर विचार सी तनवंत कन संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान हूँ ती सुखी एक एक पुछाने तो सोजी जाना है।

ने का गुपचान देख कि मैं हमा कान बकान देख का गुण कही न जाना। आठ बैर बराबर सह जूरे का नाम से जन पूरे मन मेरे दिन की ओट ली ही मान तना अपना दिन जान दी ही जेन जाने अपना प्रभु छाता सो जान सर्व थोका दाता दुख शरण सर्व सुख पावे दुख का दर्श सपा मिटावे अवर सियान सक छाड़ दे जन की तुसी वादा गावन जान होवी तेरा नानक तेह जन के पूजा हूँ साधु पैरा सलोक साधुपुरख जन जाने साधुपुरख का नाम तह का संग से खुद रह नानक हरुगन का अष्टपति साधुपुर से की कर प्रतपाल शिव कपुर सदा दयाल से की गुर दुर्मा तुम्हारे हेरा गुरु भजन हर नाम उचर साधु से के बंधन काट गुरु का सेव उपकार त्याट साधुगुरु से को नाम दान दे गुरु का से गुरु पागी साधुगुरु से कहा पल तस्वार नानु साधुगुरु से कहा

प्राव स्वामी अपने कृपा जसाव करी नानु सो सेवक गुरु की माता देवी सुबह सुबह गुरु का मन माना सो सेवक परमेश्वर की गात जाना सो साधु कर जिस रहता हर नवान कुबार गुरु का बल जाओ सर्वदान जी का दाता पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म है जन जन हकार ब्रह्म जी कह आप नहकाश परम सह सो सियान प्लया न जाइय नान कह गुरु बिड भागी पाग सफल दर्शन पीखत पुनीत पर सत चरण गात निर्मल दीत पेट संग्राम गुण रवि पार ब्रह्म की दरगह कवि सुनकर वचन कर नाग हनि मन संतु खादम पति आने पूरा गुरा खियाओ जा का मंत्र अमृत दृष्ट पीखा हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाई नानक जिह पावे दहलय मिलाय जिह पाई कुछ तत्नेक सतपुरख पूर्ण बबी काह बोल न पहुचत प्राणी अगम।

सुदन हर शिवादि पाव जेस सुख का नित बाछम जीत सो सुख साधु संग प्रीत जेस सुख का नित बाछम जीत सो सुख साधु संग प्रीत जस सुबह का करह पलि करने सा सुबह बज हर की शरण अन के पावी रोग न जाय रोग मेटा हर अव खतराई सर्व निदान में हर नाम निदान जब नान तर्क प्रवाह मन प्रभु दह हर का नाय दह दह तावता बैठाता कव विघ्न लागो को जागृता बस हर सुय काल ताति ठंडा हर नाम सिम सिमर सदा सुख पाऊ पाऊ बिन सब पूर्ण होया सुख भगत भया तुम प्रकाश देत कर जाय बस अविनाशी कहो नानक काट जम फांसी तद विचार कह जन साचा जन मर सुखा चुका चा आवागमन मिटा प्रभु सेवा त्याग।

सन तह जन वर्ण कह कह विनाशन जा पूर्ण करता प्रव सोय तब जम कि त्रास कह हुक सोय जब अवगत अगोचर प्रवी का तब चित्रगुप्त केश पूछत लिख जौनाथ निरंजन अगोचर गादि तब कंस टिकन बंधन वादी

श्री त्रिभुवन गावष्टपति पूरे गुर का सनापति सपार ब्रह्म निकट कर भीख सहस सहस रघुबिंद मन अंतर की दास अलियत त्याग हतरंग संत जान की दूर मन मांग अब छोड़ बेन्ती करहु साध संग अगन साग तरह हर तन की पर लिहु पंडार नान गुरु पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद सत्संग भज परमानंद नरक निवार उदार जियो गुण गोविंद अमृत राह पियो।

मूरत पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचियो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंग ना तुम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगणता सर्वहणता सर्वते अणपेख सर्वशास्त्र ना जान ही जह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेद भाखत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र ना आव ही वह चित मधुपार छंद त्व प्रसाद गुणगण उदार महिमा पार आसन अभंग उपमा नंग अनुभव प्रकाश निस्

प्रणालय हैं, अर्घालय हैं, खलखंडन हैं, महमंडन हैं, जगतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, काल कारण हैं, सर्ववारण हैं, त्रित के धरन हैं, जग के करण हैं, मन मान्य हैं, जग जान्य हैं, सर्वंभर हैं, सर्वंकर हैं, सर्वपास्य हैं, सर्वनाश्य हैं, करुणाकर हैं, विश्वंभर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंडस हैं, खलखंडस हैं, परते पर हैं, करुणाकर हैं, अजपा जप हैं, अथपा थप हैं, कृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अमृतामृत हैं, करुणाकृत हैं, अकृताकृत हैं, तरणी त्रित हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अजपाकृत हैं, अमृतामृत हैं, निर्णायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंभर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पवभंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापण हैं, जप जापण हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकार हैं, हर्ताहर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्मवास हैं, जासके जास हैं, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो

नमस्तल प्रणामे स्मस्तल प्रणासे अगंजल नामे स्मस्तल निवासे नृकामंग विपूते स्मस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी गरिमुल्क निंदा स्मस्तल निवासी अजायब विपूते गजायब गणिमे हरियंग करियंग करिमुल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते।

रहो भग ध्यान लगायो नहात प्रियो लिए सास समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो विख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कहो सुन ले हो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहण पूज धरियो सिर काहू लै लिंगरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पछाह को सीस निवायो।

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता। किलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुजा पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अडिल सुनै गुंग जो यह सुरस ना पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै। हो जो याकी एक बार, चौपई को कहै चौपई। संबत सत्रह सैस पणिजै, अर्थ सैस पुण तीन कहिजै। भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीर स्तुद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो है बखान्यो। दोहरा

सुख पाइए। क्या कहिए किस आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास। सब कुछ कीता तेरा वरतै, सदा सदा तेरी आस। जे देह वडियाई तां तेरी वडियाई, ए तद तुझे ते आओ। नानक के प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महा।